0: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
1: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िए डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
0: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: रेडियो आदिखोला 105.4

को घर में नया कंप्यूटर लिया अरे सदै घर में ककटेल पार्टी ठूल सचिव भाग अरे घरने को पकेट में हाथी महंगो घड़ी लाग अरे हजुर बाको खींच छाती भ्रष्टाचारी भागे छोरा मेरे बिलौ न कर बाइसाइकल से चाहिए रे छोरी खेलौना छर्बी डग गई रे कहाँ ल्याउनु छोरी देश को सेवा करते मोटे घुस छोरी बल्ल पेट भर्दु हिंदी नई मर्दु।

0: ए समय को साथ में जितु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
1: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।